0: 101.3।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: Download Waves OTT app now and watch for free.

जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है, इस जान और अरमान के लिए तेरी मुस्कान जरूरी है, और वो मुस्कान के लिए मेरी जान दे दूंगा या किसी की जान लूंगा।

0: ప్రగతి ఎఫ్ఎం 101.3.
1: మీరు వింటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వివిధ భారతి 101.3. టైం చూస్తే 11 గంటలకు కావస్తోంది అండ్ మరికొద్ది క్షణాల్లో ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి ప్రసారం అవుతున్న హిందీలో ఇంగ్లీష్లో వార్తలు వింటారు.
2: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాథ్ మే శక్తి సింగ్. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई. नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी.
3: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए. दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए.
2: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं. जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं. ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं. उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है. होती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है. पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है. नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं. सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तर्फ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई. उधर यमन के हुती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए. यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है. वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा. इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा. 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है. नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है.
4: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है. डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है. इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता.
2: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है जो 19 सितंबर तक चलेगा. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं. सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 17वीं सदी के कवि संत मकूल दास महाराज की स्मृति में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया. श्री सिंधिया ने संत मलूकदास को आध्यात्मिक शक्ति का वाहक बताया और देश में मुश्किल दौर में भी सनातन धर्म की मूल भावना को बनाए रखने में उनके योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है उसके पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है जो दूसरे देशों से उसे अलग बनाता है. दूसरे टी ट्वेंटी क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
3: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
5: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. On the attack on commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. The Finance Ministry today clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The Ministry said that payments to merchants P2M up to 2,000 rupees along with transactions covered under the zero MDR framework for small merchants will also remain free. The Ministry said that consequently, approximately 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. Chief Ministers of 6 states today signed the Kishon Multipurpose Dam Project Agreement for the rejuvenation of the Yamuna River. These states are Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan and Delhi. The agreement was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Shah expressed confidence that once the project is completed, this event will become an important chapter in history. He said that the central government has declared the Kishon project a national project. Mr. Shah said the central government will bear approximately 90% of its financial burden, while the remaining 10% will be borne by the participating states. In Saudi Arabia, civil defense activated emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif today. Alerts had also been issued and lifted in 6 cities including Yanbu, Saudi Arabia's main Red Sea oil port. Saudi Arabia today issued fresh but very brief emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif in the context of potential Houthi attacks. The alerts were lifted in just a few minutes, with authorities saying the danger had passed. Meanwhile, a Houthi official today claimed that Saudi warplane struck Taiz province of Yemen, killing 3 people, while Human Rights Watch accused the Houthi rebels of possible war crimes with its attacks on commercial vessels. The Delhi government has announced to double the fixed monthly incentive for ASHA workers from 3,000 rupees to 6,000 rupees. This decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi today. She said that the increase in the monthly incentive was an important step towards recognizing ASHA workers' contribution and ensuring their financial security. Ms. Gupta said that it will boost their enthusiasm for their work and help them continue their services. There are 6,725 ASHA workers currently working in Delhi. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi tonight and take a 2-0 lead in the three-match series. Chasing a target of 160 runs set by Afghanistan, India comfortably scored 163 for 3 in 14.5 overs. Put into bat first, Afghanistan scored 159 runs, losing 8 wickets in stipulated 20 overs. And with that, we end this news bulletin.
1: సమయం 11 గంటల దాటి 10 నిమిషాలు కావస్తోంది అండ్ అప్పటివరకు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి హిందీలో ఇంగ్లీష్లో వార్తలు విన్నారు. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి విజయవాడ ఎఫ్ఎం 101.3 మెగాహెడ్జ్లపై మా ప్రసారాలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రేపు ఉదయం 5:55 మా ప్రసారాలు ప్రారంభమవుతాయి. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం. జై హింద్ అండ్ మీ మాధవి సైనింగ్ ఆఫ్.